0: जोबर्ग ट्रैफिक, जोबर्ग ट्रैफिक, मर्स बेंगवेला, कॉल साइन विक्टर रोमियो लिमा अल्फा 3।
1: Et 6 par 0 niveau.